कि हम सताए खड़े हुए हैं, सलाम ले लो। ये कैसी मंजिल पे आ गए हैं, न कोई अपना न हम किसी के। ये कैसी मंजिल

तुम अपने दामन में आज आका तमाम अपने गुलाम ले लो। तुम अपने दामन में आ

तेरे गुनहगार बंदे तेरे सामने अपने गंदे हाथ फैलाए हुए, हम मुजरिम है, खताकार है, गुनहगार है, सियाकार, सब कुछ है बंदे मगर तेरे है, तुझे छोड़ के हम गंदे जाए कहाँ। माई बिलवड अल्लाह, वी आर योर सिनफुल सर्वेंट्स एक्सटेंडिंग अवर बेगिंग बोल्स बिफोर यू। देर इज नो वन फॉर अस बिसाइड्स यू, देर इज नो सपोर्ट फॉर अस बिसाइड योर सपोर्ट। या अल्लाह, देर इज नो वन फॉर अस बिसाइड्स यू। We are not going to bow our heads before any idol. Ya Allah, you are the only one that's worthy of worship. Light up our hearts with the noor of zikrullah. Ya Allah, bless us with sukoon in our lives. Bless us with the best of dunya, the best of akhirat. Ya Allah, give us rahate do jahan. My beloved Allah, bless us with rahate do jahan. Distancing ourselves from you and your beloved Nabi sallallahu alayhi wasallam has brought us nothing but restlessness, anxieties and worries. Ya Allah, become ours and make us yours. Don't test us in this world, in the qabr, in the akhirah. We are not worthy of being tested, my Allah. We are extremely weak and we are acknowledging our weakness. We are not like the sahaba ikram radiyallahu anhu ajma'in. Ya Allah, hamare haal par raham farma, hamare haal par raham farma. Have mercy upon us, have mercy upon us, have mercy upon us.

नमाजों में उन्हीं के दर पे मैं करता जबी साई, नमाजों में उन्हीं के दर पे मैं करता जबी साई। तिला